पौड़ी पड़े हवे गुनगा तो ये साधना मारिए जे हाका ले करना ते जो ना पचारिए है ऐसी गला ना खेडिए जिधर के गया हारिया पड़े आया त्यों मैं विचार के विचारी।

पौड़ी चक्र लगे चाकरी जे चले खसने पाए हरमत तिसनो रियो वजो पे तो ना खाए खसमे करे बराबरी फिर गैर तंदर पाए वजू गवाहे अगला मोह मो पा ना खाए जिस दात ता था ना किस कहिए शाबाश नान हुकुम ना चले लाल कसम चले।

0: सच कमावे सच रहे सचे सेव समाए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सतनाम वाहिगुरु साहिब जी एक ओंकार सतनाम करता मूर्ख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल प्राणनाथ अनाथ सखे दीन दर्द निवार हे समरथ अगम पूरन मोहे मया तार अंधकूप महापयान नानक पार उतार मैं तान दीवान तू है मेरे स्वामी मैं तुद आगे अरदास मैं होर थाऊं नाहीं जिस पह करो बेनंती मेरा दुख सुख तुझ ही

आप जी रोजाना इस स्थान तो अमृतमयी बाणी लड़ीवार शब्द विचार दा लाहा प्राप्त करते आ रहे हो। वडहंस राग दे विच धन गुरु अमरदास महाराज तीसरे पातशाह जी वल्लों जो पावन शब्द उच्चारण किया, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन बाणी पवित्र अंग 560 दे उपर सुभाईमान है। शब्द का केंद्री भाव रहाओ, रुकना, समझना। सतगुरु गुरु अमरदास महाराज जी कृपा करते ने मन नू असी समझाउणा है। जदों भी असी ये शब्द का अभ्यास करना, अपने अपने मन नू समझाउणा है। गुरु अमरदास महाराज पातशाह जी दे राही अपने मन नू आवाज़ देनी है कि हे मेरे मन, तू गुरु दे शब्द नू कमा, तू हरी दे नाम नू चेते कर। शब्द नू कमा के तू उदे हुकम नू मन, उदे हुकम विच चल, तां ए जो अंदर होमे है ये होमे अंदरों मिट जाए, अहंकार अंदरों दी मिट जाए। होमे दा अर्थ होंदा है हाँ, मैं हाँ। होमे दा अर्थ हाँ मैं, भी मैं हाँ। ते जिहड़ा कहिंदा है भी मैं हाँ, उहदे सामने सारे ही छोटे पै जांदे आ, क्योंकि होमे ने अपने आप नूं बहुत उच्चा बहुत वड्डा कर दिता।

नाम मनो सावे नाम जिन कै मन वसया। वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब, क्या नाही करते रह साचा नाम मेरा आधार। साच नाम आधार मेरा जन भुखा सब गवाइया, कर शांत सुख मनवाई बसया। जिन ऐसा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता, गुर बिठो जिसनी आए बड़े आईया।

श्री हर कृष्ण तयाइयन जिस डठै सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै करनो निदा बिताए सब थाई होए सब।

दर्शन स्नान चौंकियां चंडे वंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखांदा मनी वा मत उची मत पत दा राखा वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो। श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरु धामां दे जिन्हां तों खालसा पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दे दार। सेवा संभाल दा दान अपने खालसा जी।

सजन सचा पात साहो साहो जिस पास बैठिया सोहिए सबना दिसाहो सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी तनासरी महला पंजवा औखी कड़ी न देखन दे अपना बिरद संभाले हाथ दे रखे अपने को सास सास प्रतपाले

राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर गम्मा गम्मा पारा सब त्या वहीं सब त्या वहीं तुद जी हर सच्चे सिरजन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर ते आवो हो संतो जी सब दुख विसारन हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एक को पुरख समाणा एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज वडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हों तुद बिन अवर ना जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखाणा जो सेव है तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा हर ते आवहें हर ते आवहें तुद जी से जन जुग में सुखवासी से मुक्त पाए जैन हर ते आया जी तिन टूटी जमकी फांसी जिन निरभौ जिन हर निरभौ ते आया जी तिन का पो सब गवासी जिन से बया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक करें हर पूजा जी तप तापें जपें बेअंता तेरे अनेक पढ़े बहु सिमर शास्त्र जी कर किरिया खटकर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भावें मेरे हर भगवंता तू आदि पुरख अपरंपर करता जी तुद जे बड़ अवर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नहीं जल करता सोई तुद आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करहें सो होई तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब से का जानोई आसा महला चौथा तू करता सचियार मेंडा साई जो तो भावे सोई थीसी जो तू देहें सोई हो पाई रहा सब तेरी तू सबनी ते आया जिसनो कृपा करें तिन्ना अमृतन पाया गुरमुखला दा मनमुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया तू दरिया सब तुझ ही माहे तुझ में दूजा कोई नाहे जी जन सब तेरा खे विजोग मिल बिछोड़िया संजोगी मेल जिसना तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सद ही आख खाने
जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद मिन दूजा अवर ना कोए। तू कर कर वेखे जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला, तित सरब रड़े भाईरे निवासा। पानी पावक तिन्हे किया, पंकजो मोह पग नहीं चाले। हम देखा तह डूबियले, मन एक न चेतस मूड़ मना। हर बिसरा तेरे गुण गलिया रहाओ, ना हो जति सती नहीं पड़या। मूरख मुगदा जन्म पया, प्रणवत नानक तिनकी शरणा। जैन तू नाही विसरिया, आसा महला पंजवा। भई प्राप्त मानक दे हुरिया, गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया। अवर काज तेरे किते ना काम, मेल साध संगत भाजे केवल नाम। श्रंजाम लाग भवजल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कै रहो। जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जन्ने आहार राया। कोहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की रखो हो शर्मा। जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जन्ने आहार राया। कोहो नानक हम नीच करम्मा, शरण परे की रखो हो शर्मा। इक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चाओ पाई। हमरी करोहा दै रक्षा, पूर्ण होए चित्त की इच्छा। तब चरण मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सबै तुम कावो हो, आभा दे मुहे बचाव हो। सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक सिख सबे करतारा। मोर अच्छा निज कर दे करिए, सबैरन को आय संगरिए। पूर्ण हुए हमारी आसा, तोर भजन की रहे प्यासा।

राम कली महला तीजा अनंत इक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सह सेती मन वजियां वादाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावन आइया शब्दो तंगावो हरी केरा मान जिनी वसाया कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब में सारना अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारना सवना गल्ला सम्रत स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही घर तेरा घर दां तेरे सब किछ है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरे साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिनो भुखा सब गवाइया कर शान सुख मन आए वसिया जिनो इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटहो जिस दिया एह वडियाइया कह नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यारो सच्चा नाम मेरा आधारो वाजे पंशव तित कार सुभागे कार सुभागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जिनको से नाम हर के लागे कह नानक तसुक होआ तित घर अनहद बाजे आनंद सुनो हो बड़े भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पाए सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पोनी कहते पवित सतगुर रहा पर उरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पोनी कहते पवित सतगुर रहा पर उरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे मुंदावणी महला पंजवा थाल विच तिन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे अधारो जे को खावे जे को भुंचे
तिसका होए उधारो एह वस्त जी रह जाई नित नित रख और तारो तम संसार चरण लग तरिए सब नानक ब्रह्म पसारो।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह मंगुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह भंग गुर प्रसाद। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

जय कर कीरता खिय करते कावे बेचारो तित कर गाव सोहेला सवरे हो सृजन हारो तुम गाव मेरे निरपाओ का सोहेला आरी जित सोहेला सदा सुख हो राव नित नित जीड़े सम

0: पहला वार श्लोका ना श्लोक में मैंने पहले के लिखे कुंडे असराजे की तुनी श्लोक महला पहला बलिहारी गुर अपने देवहारी सदवा जिन मानसते देवते किए करतना लगी वार महला
1: जिस चंदौ गए सुर चढ़े हजार

जति सी रंगी खुद दी जहान खुद निकिया खुद बदिया खुद मन अभिमान खुद पौन पानी बसंत खुद टाती खा सब तेरी कुदरतों कदर करता पाकि ना ही पा नानक मंदिर वेखै।

0: काज श्री सतगुरु सो प्रसन्न कल युग होए राखो दास पाठ की लाज।
1: सत सूरों सील बलवंत सत पाए संगत सगन गुरु मत निर्वैर लीना जिस धीरज तुर

छुटक्यो अधिक अहं बुद्ध बाधे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।